पंडित मोनी पाड़ पढ़ थके भेख थके तन धोए बिन शब्द कन न पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाईए करम प्राप्त होए पौड़ी स्त्री पुरख आतने बैमंद पकाया। दिसदा सब किस चलसी मेरे प्रपाया क्यों रहिए तिर जग को कड्ढ उपाया गुर पूरे की चाकरी तिर कंत सबाया।

माया मोह विसारिया गुर का पौ हित अपार लोभ लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगा मोख द्वार नानक आपे मेल ले आपे बख्शन हार महला चौथा नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला चौथा सावण आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम ते आए दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मी वुठा शह बर लाए

Avetheim. हार तिसहत आवो संत जनों जो अंते लय छाए हर कीर्त भगत आनंद है सदा सुख वसै मने आए। जिन्ना गुरमुख नामे अराध्या तिन्ना दुख भुख लै जाए जन नानक तृप्ते गाए गुण हर दर्शन दे सुभाए पौड़ी। गुर पूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया तुस देवे आप दयाल ना छपै छपाइया। हिरदय कवल प्रकाश उन मन लिव लाइया जे को करे उस दी रीस सिरशाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया श्लोक महला तीजा। अमर वे परवाह है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुज्जत करनी जाए। आप छोड़ शरणाए पवै मन लै रजाए गुरमुख जम डांड न लगई हो मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए महला तीजा।

होई श्रेष्ठ ठार, लेवो कंठ लगाए अपदा सब हर। नानक नाम त्याए प्रभ का सफल घर, महला पंजवा। वुठे मेघ सुहावने हुक्म कीता करतार, रिजक पायो ने अगला ठांड पई संसार। तन मन हरिया होया समृत्य गम अपार, कर कृपा प्रभ अपने सच्चे सृजनहार। कीता लोड़ै सो करें नानक सद बलियार पौड़ी, वड्डा आप गम है वड्डी वड्याई, गुर शब्दी वेख विगसिया अंतर शांत आई। सब आपे आप वरतदा आपे है पाई, आप नाथ सब नथियन सब हुक्म चलाई। नानक हर भावे सो करे सब चले रजाई, राग सारंग बाणी भगतां की कबीर जी को अंकार। सुगुरु प्रसाद कहा नार गर्भस्थोरी बात, मान दस नाज टका चार गांठी, एंडा टेढो जात रहाओ। बहुत प्रताप गाँव सौ पाए, दोए लख टका बरात, दिवस चार की करो साहिबी जैसे बनहर पात।

हर के संत सदा तिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिनको कृपा करत है गोबिंद, ते सत संग मिलात। मात पिता बनता सुत संपत, अंत ना चलत संगात, कहत कबीर राम भज बोरे, जन्म अकारत जात। राजा श्रम मित ने जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी रहाओ। हस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसे, बस तो होए होए सो उजर, उजर होए सो बसे। जल ते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। भेखारी ते राज करावे, राजा ते भेखारी, खाल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुखधारी।

कहत नाम देव ताचियान, निर्भय होए पजिए भगवान। बदो की ना होड माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर। खेल परे है तो स्यों रहाओ।

सारंग एक ओंकार सत गुर प्रसाद तै नर क्या पुराण सुन कीना अन्न पावनी भगत नहीं उपजी भूखे दान न दीना रहाओ।

बाट पार कर मूस बिरानो पेट पर अपराधी जे पर लोक जाए आप कीरत सोई अब दया साधी हिंसा तो मानते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत न चाली छाड मन हार बिमुखन को संग सारंग महला पंजवा सूरदास एक ओंकार सत गुर प्रसाद हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्पियो आनंद सहज तुन चोक रहाओ दर्शन पेख पय निर्विखय पाए है सगले थोक आन बस्त स्यों काज न कछु है सुंदर बदने आलोक श्याम सुंदर तज आन जो चाहत ज्यो कुष्टि तन जोक सूरदास मन प्रभ हाथ लीनो दिनो ए परलोक

आज्ञा कहो किस तुलहा बंधो क्या परवा सा तन का कहा बिसा सा इस भांडे का इतन कला केठन का।

बरस कना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही अरे, गुरु मोहि मन हर रस लीना रहाओ। सहज सुखी बर का मन प्यारी, जिस गुर बचने मन मान्या, हर वर नार पई सोहागण, मन तन प्रेम सुखान्या। आवगण त्याग पई बैरागन, अस्थिर वर सुहाग हरी, सोग विजोग तुस कदे ना व्यापै, हर प्रभु अपनी कृपा करी। आवण जान नहीं मन नह चल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही, मलार महला पहला।

पाया। रतन पदार्थ पर हरत गया, जत को तत ही आया, बिष्टा कीट पे उत ही ते उत ही माय समाया।

खोजी उपजाय बाती बिनसय हम बाल बाल गुर करतार। हम नीच होते हीन मत झूठे तू शब्द सवारण हार। आत्म चीन तहां तू तारण सच तारे तारण हारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे क्या क्या कथों अपार। अलख न लखी है अगामे जोनी तू नाथा नाथन हारा। किस पै दे कहो तू कैसा सब जाचक तू दा तारा।

अपने पेर हर देख विगासी तौ तन साच सिंगारू अकुल रंजन स्यों सच साची गुरमत नाम आधारू। मुकत पई बंधन गुरु खोले शब्द सुरत पात पाई नानक राम नाम हृदय अंतर गुरमुख मेल मिलाए।

महल में बैठे अगम अपार भीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार राओ। दुख सुख दो समकर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत ना मार पाइये सतसंगत गुर प्यार। एहन सलाह हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनों नजर करे करतार।

गुण को बिंद ना जानिए माए, अनडिठा किस कहन न जाए, क्या करे आख बखानिए माए रहो।

कथने बदने रह निप्रांत सो बुझे होवे जिस दात एन से अंतर रह लिवलाए सोई पुरख जिस सच समाए जात कुलीन सेवक जे होए ताका कहना कहो न कोए विच सनाती सेवक होए नानक पणिया पैरे सोए मलार माला पहला

कसम विसार किए रस भोग ता तन्यो टकलोए रोग मानंदे को मिले सजाए वैदना भोले दारू लाए चंदन काफल चंदन वास मानस काफल घट में सास सास गए काया टल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन हंस दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट सच नाय मलार महला पहला।

निरंकार आकार है आपे, आपे परम पुलाए, कर कर करता है आपे विख जित पावे तित लाए। सेवक यहा वडियाए, जाको हुकम मनाए, अपना पाणा आपे जाने, गुर कृपा ते लिये।

गौर प्रसादी ये को जान चुके मनोमन दिशा हम दीन मूर्ख विचारी तुम चिंता करो हमारी। हो दयाल कर दास दासा का सेवा करी तुम्हारी एकण दान दे तू अपना एनस नाम बखाणी।

जिस ते हुआ तस समाणा चू गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्हें हुक्म पछाणया से मेले हमें शब्द चलाए सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए।

त्रैगुण सभा तात है, ना हर भगत न पाए, गत मुकत कदे ना होवई, हो मैं कर्म कमाए। साहिब पावे सोथिये, पै करत फिराए, सदगुर पेटे मन मर रहे, हर नाम वसे मने आए। तिस की कीमत नापवै, कहना किछु न जाए, चौथे पद वासा होया, सच्चे रहे समाए। मेरा हार प्रभु अगम अगोचर है, कीमत कहन न जाए, गुर प्रसादी बुझिए, शब्द कार कमाए।

सतगुर पुरख मिले ना पाइए, हर नामे सदा समाए रहाओ। मन मुख सदा विछुड़े फिरें, कोई ना किसी नाल, हमें वड्डा रोग है सिर मारे जमकाल।

हर हर अमृत, हर हर नाम अमृत है, नदरी पाया जाए। आन दिन हर हर उचरै, गुर के सह सुभाए। नानक नाम निधान है, नामे ही चित लाए। मलार माला तीजा, गुरसाला ही सदा सुखदाता। प्रभ नारायण सोई, गुर प्रसाद परम पद पाया। वड्डी वड्याई होई, आन दिन गुण गावे नित साचे। साच समावे सोई, मांडे गुरमुख हृदय विचार। तज कूड़ कुटां भाऊ मैं बिकतृष्णा, चलण हृदय संभाल। सतगुर दाता।

अन दिन हर रवि आर दे अंतर सहज समाध लगाहे। सतगुर शब्दी मन भेदया हृदय साची बाणी। मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी। आपे दया करे सुखदाता जपिए सारंग पाणी।

आया सचे ही सच सच भतीजै विचों आप गवाया। एको एक वसै मन स्वामी दूजा अवर न कोई, एको नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सच सोई। नानक नाम प्रभु ते पाईए जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा।

मन मेरे खिन खिन नाम संभाल, गुरु की दास शब्द सुख अंतर, स्थान भय त्रिनाल रहो। मन मुख पाखंड कदे ना चूके, दूजे पाए दुख पाए, नाम विसार विख्या मन राते, वृथा जन्म गवाए।

मन तन निर्मल निर्मल माति उत्तम उत्तम बाणी होई। एको पुरुष एक प्रभजाता दूजा वर्ण कोई। आपे करे कराए प्रभे आपे आपे निदर करे। मन तन राता गुरु की बाणी सेवा सुरत समय अंतर

सेवक सेवी कर्म चढ़ाओ निरंजना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म नगाए पार कोलो चरखा चक्की चक थल वरोड़े बहुत अंत।

तीर्थ न व्यर्च पूजा अगरवास बहकार, जोगी सुन त्यावण जेते अलख नाम करतार।

पौड़ी सेव कीती संदूकने सचो सत्य आया ओने मंदा पैना रखे हो कर सुकरी धर्म कमाया ओने दुनिया तोड़े बंधन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला ने देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा।

लख तप प्रतीर्था सहयोग विबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरती लाग्यां ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।

पौड़ी सच्चा सत एक दुन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सत अतनी सच कमाया सतगुर मिले सच पैन के हृदय सच वसाया मूरख सच न जानी मनमुखी जन्म गवाया।

मैं कोई ना जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा सकल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम्हें जाने नानक दास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ समरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याये चेस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे करनो निधावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बंगे चुको जोगे अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवां मत उच्ची मादा रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो हिन माणिया दे माण नितानिया दे ताण निवटिया दी ओट सचे पिता वाहिगुरू आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है गरीब नवाज पातशाह जी आप जी दे हजूर अमृत वेले नूं मुख रखदिया दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना अंदर लड़ी वार चल रहे श्री सहज पाठ तो उपरंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन आनंद साहिब छे पौड़ियां दी अरदास समुची सेवा निभाउंदिआं आप जी दे बच्चियां पासों हुईआं बेअंत भुल्लां चुकां दी खिमा अगां तो समत बख्शिश करनी समूह संगत दी अरदास बेनती प्रवान करनी कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दियां बख्शियां दातां दे विचों तिल फुल पेटावां दर ते प्रवान करनियां दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां काम क्रोध लोह मोह हंकार तो बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दियां दातां बाणी बाणी नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ। इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं आप जी दे हजूर समूह साध संगत जी वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शिश करनी कृपा करो पावन हुक्म दी दात बख्श के निहाल करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबै चलायो
ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सुख हुए दिन राती प्राणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु

मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत,

तेरी बाणी दाता जी उन्हूं नारियों मर्द बनावे, जिथे आप खलो जांदे तिनके बिगड़े कार्य सरगे, थोड़ा दर्शन करके जी पापी जीव करोड़ा तरगे। गुरु साहब ने कृपा की थी, कहिंदे आओ राजकुमार कैसे होने हो। वो राजकुमार बन गया, पिछे राजा आ गया। राजा राजे नूं कहिंदे जा तेरा विश्वास पक्का है, ये पुत्र ही है, तू विश्वास रख्या है, जाओ जाके अपनी वो मंग ब्याह लियो। इन्हां कुछ कहिंदे खिमां ते जा चुका इतिहास गहरा ते डूंगा उच्चा ते सुच्चा, बोलदे तो गलतियां होई जांदियां। गुरु साहब ते गुरु दी संगत बख्शण योग है, अनजाण बच्चे समझ के खिमा करियो। बेअंत संगतां ने माया रूपी सीस बख्शिया, गुरु साहब सब नूं चढ़दी कला घर परिवारां विच सुख शांति बख्शिश करन। साडा नितनेम दा सारिआं दा साडा नितनेम दा पहरा तगड़ा करन, वध तों वध गुरु साहब सेवा सिमरन करवाउण, इही साडी असल कमाई है। इन्हां कुछ कहिंदे खिमां ते जा चुका बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

पाते जाय सबरी। दस वस्तु लै पाशे पावे, एक वस्त कारण बखोड़ गवावे। एक भी ना दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा को कहाँ करे। जिस ठाकर से ना ही चारा, ताको कीजे साध नमस्कारा। जाके मन लगा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बुठा। जय जने अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत सा अपनी दे राज, खाद पीत बरते अनंत उलास। अपनी अमान कछ बाहुर साले, अज्ञानी मन लूस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, पर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्ती से आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा मानना मत है। उससे

जो मन पछतावे ज्योति से सो चालनहार, लपट रहे होता अंध अंधार, बटाऊ सो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आव लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया, मिथ्या होमे ममता माया। मिथ्या राजवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रसस्ती अस्तु वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर कर दुगमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या सुन पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दर्प को हिर है। मिथ्या नेत्र पेखद पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कुतावे, मिथ्या मन पर लोभ लवावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरति सागत की आरजा, साच बिना कह हो तो सूचा। बिरता नाम बिना तन अंध, मुख आवता के दुर्गंध। बिन सिमर दिन रहन बिरता बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरते सब काम, जो किरपन के निरार धाम। धन धन तेजन जे कर बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रह अवर कश अवर कमावत, मन ने प्रीत मुखो गंड लावत।

मरा है। जिसके अंतर बसे निरंकार, जिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने।

रे जे प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू ता सुराज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे सो होए आप जपाए जपे सो नाओ आप गुआए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रकाश प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मद उत्तम होए सर्वनिधान प्रभु तेरी माया आपू कछु न किन्हू लया।

ता साजना की अजरज कथा वर्षपदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मन सगलीक होत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगट सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पय नाम रतन साध के संग कुपर जदन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा प्रमय समानी साध के संग गोचर मिलै साध के संग सदा पर फुलै साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कदम हुतावै साध संग अस्थिर मन पावै साध के संग माया थे पहन साध संग नानक प्रभ सो परसान साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनीत साध संग के सोनी बैर साध के संग न भींगा पैर साध के संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नहीं होताप साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कब हुतावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बस गोचर रहे साधु के संग जार सहे साध के संग बसे धन ऊंचा साधु के संग महल पहुंचा साध के संग दड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कह कुर्बान साध के संग सब कुल उदारे साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे।

ते निर्मला जैसे महल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगाढ़, जैसे धरि उपरे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदृश मान, ब्रह्म ज्ञानी के नाहीं अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सभी उपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,

ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी हों बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय अदाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उतारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमुख निम ठाकर नमस्कार है, नानक ओ अपर्श सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रस ना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पात्र रूप न पेखे नेत्र, साधगी टहर संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखया परा रह, मन की बासना मन ते टर, इंद्री जित पाई दुख ते रह, नानक कोट मदे को ऐसा परस, बैस न सो जिस ऊपर सो।

0: योग तैसा सुन तैसी उसमाटी तैसा मन तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरु कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगल हेठाओ जिद कर राखे तैसा दिन नाओ आपे करन करा बन जोग प्रभ पावे सोई फनोग पसरो आप हो अंतरंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार आवार नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनक प्रकार सबरी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नव धन नाम ते आवे नानक करते का अंध न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट किरफन कठोर कई कोट भेगा तमने कोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश परमाए जज जित लावो तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सजदी जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बेसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सु
1: नानक जिस स्वभावत संस्थार है कई को राजस्थान सात कहो कई को वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट किए रत्न समझद कई कोट नाना प्रकार जानत कई कोट किए चिर जीव कई कोट गिरी मेरे स्वर्ण थी वे कई कोट जकन पचास कई कोट भूत प्रेत सुख मरखाच सब ते निरह सब ते दूरा नानको आपल पत रहा भरपूर कई कोट बताल के वासी कई कोट नरक सगन वासी कई कोट जन्म जी वह मर है कई कोट भोजोनी फिर है कई कोट बैठ तही खोहे कई कोट गाला थक पाहे कई कोट खिये थनवंता कई कोठ माया मैं चिंता जय जय पाणा तत रखे नानक सबग प्रभ कह हाथे कई कोट पहे वैरागी राम नाम संगत नागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन ब्रह्म प्यास तिन खमल प्रभ अवनाश कई कोठ मांगा सत्संग पार ब्रह्म थन लख रंग जन को हो आव सो प्रसन्न नानक दे जन सदा थन धन कई कोट खानी और खंडा

है। कई कोठ नाम गुण गावे, आतन सह समावे, अपने जन को साथ साथ समारे, नान कोय परमेश्वर के प्यारे। सलोका कान कान प्रवे कह, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारन, जलथन वही अलसोय। अष्टपदे कर्ण करावन करने जोग, जो तिस भावे सोई होग, खिन में था पोथा पनहारा, ओ अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे धार अधन रहावै, हुक्मे उपजे हुक्म समावै, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे अनख रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी बड़ियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावे मानुगत पावै, प्रभावे था पाथर तरावै, प्रभावे मनसास्त राखै, प्रभावे था हर गुण पाखै, प्रभावे था बदत उदारै, आप करे अपन विचारै। दोहा सरिया का आप स्वामी, खेले विकसे अंतर जामी, जो पावे सोकार खनावै, नानक दृष्टि अपने आवै। कहो मानुख देख्या हो आवै, जो तिस भावे सोई करावै, इसके हाथों एथा सब कह ले, जो तिस भावे सोई करहे। अण जान तो विख्या मह रचाए, जे जानथ अपने आप बचाए, भरमे पुमला दे दतावै, निमख मैं चार कुंट फिर आवै।

पै खारी नीच का साजा। कावहूं अब कीर्थ में आवै, कमहूं भला भला कहा मैं, जम प्रभु राखै तम ही रह, गुर प्रसादो नानक सच कह।

अण को जथन कर आथम नहीं दरवाए हर दर गए को कैसे गवाए आपस को जो पला कहावाए तिसे भलाई निकट न आवाए सर्वो खीरे जा का मन होए कव नानक ता खी निर्मल सोए जब लक्षाने मोहिते कश होए तब इस को सुख नाही कोए जावे जाने मैं किस करता तब लग गर्व चुन मैं फिरता जब तारे खो बैरी मीता हो तब लो नश नाही जीता जब लग मो मगन संग माए तब लग धर्म राय देह सजाए प्रभु कृपा थे बंधन टूटै गुरु प्रसन्न नानक हो छूटै

बिना संतोख नहीं को राजा, स्वप्न मनोरथ बिरथे सब का जाय, नाम रंग सर्व सक होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए। कारण करावण आपे आप, सदा सना नानक हर जाप, खन करावण करने हार, इसने हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्टो करे तैसा होए, आपे आप प्रभु सोए, जो किसकीनो सो अपने रंगा, सब ते दूर सब हो कै सांगा। बूजा देखें खने भवे को, आपे एखा पे अनेक, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सद ही रहा समाए।

आए, मारे रखे को आप मान खो के कृष्ण ही हाथ हो, जिसका हुक्म वो सख होए, जिसका नाम रकंठ परोए।

पाओ। अवनाशी नाही गह खंड हो, धारण तारे हो ब्रह्मांड हो, अलख पे पुरख प्रताप हो, आप जपाए थ नानक जाप। जिन प्रभु

आपे मिलें कृपालो गुर का शब्द उच्च पै नहाला उनकी सेवा सोई लागा जिसनु कृपा खन बड़ पागा।

बसें हर संगा। सहजो सो भय होवे सो होए, करने हार पछाणे सोए। प्रभु का खिया जन मीठ लगाना, जैसा सा तै साध हटाना। जिस ते उपजे तस्मह समाए, ओए सुख निधान उनहु बन आए। आप सको आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान। सलोका सर्वखला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। जाके सिमरन उदरी जाय, नानक दसमलहार। अष्टपदी टूटी

सब कोए मख होए उचन हर दर कैस होए हम पार बनला पारा नानक तां कै संत मल्हारा चरण साध के तो थे पियाओ।

संवर्तिया विस्मण विस्म भय विस्माद जन बूझत जाया स्वाद प्रभु के रंग रचन रहे गौर के वचन पदार्थ लय ओ दाते।

ठाकर का सेवक आज्ञा कानी, ठाकर का सेवक सदा बुझानी, ठाकर के सेवक मन पन दीता, ठाकुर के सेवक निर्मल नी तो, ठाकुर को सेवक जन संग, प्रभु का सेवक नाम के रंगा, सेवको प्रभु पालन हारा, सेवकी राखे निरंकारा, सो सेवक संध्या प्रम तारा, नानक सो सेवक सास सास समारा, अपने जन का पर्दा ढाका, अपने सेवकी आपे रख, अपने दास को देह बढ़ाई, अपने सेवक नाम जपाई, अपने सेवकी आपत रख, तांगी की गतमंद कोई न लाख, प्रभु के सेवको को ना पहुंचा, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैत प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रख, पसम कर लस्कर कोट लाख, जिसका शासन काटते आप, ताको राख देखन हाथो, मानसो यतन करत बो पात, तिसके करत बो बिरथे जाता,

ताता करे भगत आत्म कै जाए प्रभु अपने सौ रहे समाए जो हो आहोत सो जन प्रभु अपने का हुक्म पछान तिसकी महिमा गौण वखानू तिसका गुण कह कर जानू आड़ पर प्रभु बसे हजूरे।

सवजन सर्वसौखदाता। तिसकी शरण हो सर्व सुख पावै, तिसके दर्शन संपा मटावै, अवस्यान संगली छाड़ो, तिस जन की तू सेवा लागा। आवण जान होवी तेरा, नानक ते जन के पूजो संत पैरा सलोका। सत पुरख जन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग संग उतरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुरु सिखी कनी प्रतपालो, से मुख गुण संदा दे आलो, सिखी गुर दुर मथ मल हरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिखी बंधन काटै, गुर का सिख मकान ते हटै। सतगुरु सिखो नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी हे, सतगुर सिख हलत पलत सवारै, नानको सतगुर सिख जी नाल समार, गुर के ग्रह से कजोर, गुरखी आग्या मन में सह, आपस को कर कछ न जनाब, हर हर नाम हृदय सत्याव, मन विच सतगुर के पास, सेवक का जरासा।

का भरत भरत ब्रह्माया परया तो सन नावे नानकी प्रभ बेण थी अपनी भगती लाए अष्टपदी जाज गजन जाचे प्रभ दान कर कर पा देवो हर नाम साच ना की मांगो तूरा पार ब्रह्म मेरी सरदा पूरा सदा सदा प्रभ के गुण गावो सा सा प्रभ थमे ते आवो चन कौन सौ लग प्रीत भगत करो प्रभ खीनत नीत एक उठ एक अंधारो नानक मांगे ना प्रभ सारा।

चिंता। जय अपने आप तिहारा, तै कौन कदे खुन सोने हारा, वो बेंत ऊंच ते ऊंचा, नानको आप सको आपे पहुंचा। जय आप रचो परपंच अकार, तै गुण मैं की नो वस थारा, पाप पुनो तै पई कहम तो, खो नरक को स्वर्ग बिषम तो, आण जाण माया जंजाला, होमे मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार खियो बखियाण, आपन खेल आम कर देखै, खे संकोचे तो नानक एकै, जय अवगत भगत आप, जय पसरे पसार संत पन तापा, दोहो पाको गयपतनी, उनकी शोभा उनहु बनी, आप कौतको करे अनचोजा, आपे रस भोगण नर जोग, जिस भावे तिस अपना लावा, जिस भावे तिस खेल खिलावै, बेसमारथ गण तोला है, जो बुलावो तो नानक दास बोला है, सलोक जी जंद के ठाकुर, आपे वर्थ नहार, नानक एको पसरिया, दूजा कह दसटार, अष्टपदी आप कथे आप सुने हार, आप एक आप स्थार, जान जस भावे तिष्ट पाए, अपने भाने लय समाए, तुम ते भिन नहीं गजोए, अपन सूत सब जगत परोए, जा को प्रभु जियो आ बुझाए, सच ना सोई जिन पाए, सो समदासी दत का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता, जी यंत्र हो सब ता कह हाथ हो, दीन दयाल अनाथ को नाथ हो, जिस राखे तिस कोई न मारा है, सो मुआ जिस मनो बसारा है, तिस अमर कहा को जाए, सब सर एक निरंजन राय, जी की जुगत हो जा कह सब हाथ हो, अंतर बाहर जनो साथ हो, गुण दान बेअंत अपारा, नानक दास न बलहारो, पून पून रहे दे आला, समूपन होमद कर पाला, अपने कर्तव्य जाने आपो, अंतर जामी रहो वे आपो, प्रतपाले जियन बो पाता, जो जो रचे सुथे त्यां तो, जिस पावे जिस नहीं मलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, कर्ण हर नानक एक जानिया, जन लागा हर एक नाए, जिसकी आसन बिरथी जाए, सेव को सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई, इस ते ऊपर नहीं विचारा, जाके मन वस्या निरंकार, बंधन तोर पे नर भैरो, अंधन बूझे गुर के पैरो, ए लोग सुखी पर लोक सहेले, नानक हर प्रभापे मेले, सा संग मल करो आनंद, गुण गावो प्र परमानंद, राम नाम दत करो विचारा, दुर्लभ देखा गुरु दौरो, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तन का एह सुहाओ, आठ पैर प्रो पेखो नेरा, मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा, सुनम दे सहदे मसावो,

अंतर सौ बाहर अनंता। कट कट व्यापरिया भगवंतो तन मैं आकाश पियालो, सर्वलोक पूर्ण व्रत पालो, बंतन पर्वत है पार ब्रह्मा। जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बसंतर माहे, चार कुण दिशे समाहे, तिस्ते पर नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, भेद प्राण समृत में देखो, सज सो नखत्र में एका। बाणी प्रभु की सब को बोला है, आप ढोलना कम हो ढोला है, सर्वखना कन खेलना खेला, मोल पाइय गुण अमोल, सर्व ज्योत में जाखी ज्योतो, तारो स्वामी ओत पोता, गुर प्रसाद परम का नास हो, नानक तन में हेम सास हो, संत जना का बेखन सब ब्रह्मा, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुनो सो बचन, सर्व व्यापी राम संग रचना, जिन जाता तसी यह रहता, सत वचन साधु सब कहता, जो जो होए सोई सुख माना, कर्ण करावण हर प्रभु जाना, अंतर बसे वार पी ओही, नानक दर्शन देख सम ओही।

जो जाने तो सदा सको होए आप मलाय लय प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस दे भगवंत धन धन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का एह सुहाओ जन के संग चित आव नाओ आ मुक्त मुक्त करे संसार ना ते जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाख नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी।

सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पर पाया उतरे सकल वसूरे दुख रो संताप उतरे सोने सच्ची बाणी।

ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रमदा परम फुलाया अमृत तज बिख संग्रह करते आप खुआया गुरमुख विरले सोजी पई तिन अंदर ब्रह्म दिखाया।